मैं तेरी वड़ी आई कोई ना वो ना जा ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया पान जा कोई ना वो ना जा ने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

श्रीमान संत बाबा गुरचरण सिंह जी, श्रीमान संत बाबा सेवा सिंह जी, नानक सार।

अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सधारो। जे को खावा जे को कुंचा, तिसका हो उधारो। ए वस्त तजी न जाई, नित नित राखो रधारो। तम संसार

राग एक संग पंच भरंगन संग आलाप आठो नंदन प्रथम राग पर वह करही पंच रागनी संग उच रही प्रथम पहरवी बिलावली पुन्या की गावे मंगली पुन असले

अलख पुरक अभिगत अवधूता जात पात जय चेहन बरना अभिगत देव अक्षय अन भरमा सबको काल सबन को करता रोग शोक दो कन को हरता एक चेत जय एक छिन ध्यायो।

कात हूँ सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कात हूँ अचेत हो के सोवत अचेत हो, कात हूँ भिकारी हो के मांगत फिरत भीख, कहूँ माँ दान हो के मांगे धन देत हो, कहूँ माँ राजन को दीजत आनंदान, कहूँ माँ राजन से छीन छेत लेत हो, कहूँ वे दरिद कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जज गंधरा बुरा कहूँ विद्याधर, कहूँ भय किन्नर पिसाज कहूँ प्रेत हो, कहूँ हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जपे हो, कहूँ हो के तुर का पकारे बांग देत हो, कहूँ कोब का हो के पुराण को पढ़त मत, कतहूँ कुरान को निदान जान लेत हो, कहूँ बेदरित कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देत हो, कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो, कतहूँ विचार विचारत को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के निकेत हो, कहूँ बेदरित कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ शास्त्रधारी कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ मारत हारी कहूँ नार के निकेत हो, कहूँ देववाणी कहूँ शारदा भवानी, कहूँ मंगला मिटानी कहूँ श्याम कहूँ सेत हो, कहूँ धर्म धामी कहूँ सर्व ठौर गामी, कहूँ जति कहूँ कामी कहूँ देत कहूँ लेत हो, कहूँ बेदरित कहूँ तास विपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो, कहूँ जटाधारी कहूँ कंटी धारे ब्रह्मचारी, कहूँ जोग साधी कहूँ साधना करत हो, कहूँ कान फारे कहू डंडी होय पतारे, कहूँ फूक फूक पावन को पृथ्वी पे धरत हो, कतहूँ सिपाही हो के सादत सिलाहन को, कहूँ छत्री हो के अर मारत मारत हो, कहूँ भूम भार को उतारत महाराज, कहूँ भाव भूतन की भावना भरत हो, कहूँ गीत नाद के निदान को बतावत हो, कहूँ नृत्यकारी चित्रकारी के निधान हो, कतहूँ पयुक हो के पीवत पीवावत हो, कतहूँ मयुक ऊ कहूँ मत पान हो, कहूँ माँ सुर हो के मारत मवासन को, कहूँ माँ देव देवतान के समान हो, कहूँ माँ दीन कहूँ द्रव के अधीन, कहूँ विद्या में प्रवीण कहूँ भूम कहूँ भान हो, कहूँ अकलंक कहूँ मारत मयंक, कहूँ पूरन प्रजंग कहूँ स्वच्छता की सार हो, कहूँ देव धर्म कहूँ साधना के हरम, कहूँ कुत्त कुकर्म कहूँ धर्म के प्रकार हो, कहूँ पवन हरि कहूँ विद्या के विचारी, कहूँ योगी जति ब्रह्मचारी नर कहूँ नार हो, कहूँ छत्रधारी कहूँ छलधर छल भारी, कहूँ छकवारी कहूँ छल के प्रकार हो, कहूँ गीत के गवैया कहूँ बेन के बजैया, कहूँ नृत्य के नचया कहूँ नर को आकार हो, कहूँ वेद पानी कहूँ कोक की कहानी, कहूँ राजा कहूँ रानी कहूँ नार के प्रकार हो, कहूँ बेन के बजैया कहूँ धेन के चरैया, कहूँ लाखन लवैया कहूँ सुंदर कुमार हो, शोधता किसानों के संतन के प्राणों के दाता महदानों के निर्दोषी निरंकार हो, निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, के भूपन के भूपो के दाता महदान हो, प्राण के बचैया दूध बूध के दिवैया, रोग शोक के मिटैया की दोमानी महमान हो, विद्या के विचारों के अदमय अवतारों के शोधता की सूरतों के शोधता की शान हो, जोवन के जालों के कालों के कालों के सतरन के सूनों के मित्रन के प्राण हो, कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखाद, कहूँ नाद को निदान कहूँ पूरन भगत हो, कहूँ बेदरीद कहूँ विद्या की प्रतीत, कहूँ नीत अनीत कहूँ ज्वालासी जगत हो, पूरन प्रताप कहूँ कांति को जाप, कहूँ ताप को अताप कहूँ जोग ते डिगत हो, कहूँ पार देत कहूँ छल सिउ छिनाए ले, सर्व काल सर्व ठार एक से लगत हो, ताप प्रसाद सवैये श्रावक सोध समूह सिधान के, देख फिरियो घर जोग जति के, सूर सुरार्दन सोत सुदादिक संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहे हो मत को ना देखत प्राणपति के, श्री भगवान की भाई कृपा हुते एक रत्ती बिन एक रत्ती के, माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे, कोर तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे,
भारी भुजान के भू भली बिन्यावशीसना जाद विचारे एते भय तो कहाँ भय भूपदंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे भूत भविक भगवान के भूपत कान कनेनी जात विचारे श्रीपद श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथन हंद आदम दान सो संजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेब कुरान जिमीन जमान समान का पेख है पौन हार जति जत धार सब सो विचार हजारक देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है सुतुष्पा तुरंत बासो सासना दुर्जान दलाएंगे भारी घुमान भरे मन में कर पर्वत पंग हल्ले ना हल्लाएंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बिन त्याग यहाँ निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार विचारे सार की धार बछैया तोरा देर मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनि निशाचर भूत भविक भगवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब धाप धपेंगे पुन प्रतापन बार जाय धुन पापन के पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जाग सत्र सभय अवलोक चपेंगे मानो इंद्र गजेंद्र नारदेव जयंत लोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाधिक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर भीषण सचिव अदंत फसे जा फांस परेंगे जे नर श्री पद के प्रश्न है पग ते नर फेर ना धे धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन बूंद के बैठ रहे हो भग ध्यान लगायो नाथ प्रिय लिए सात समुद्र लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैठ बितायो साचे कहा सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तेन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पू धरियो सिर काहू ले लिंगरे लटकायो काहू लखियो रावाची दिशा में काहू पुछा को शीश निवायो को भूतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन धायो कूर क्रिया और दियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो तो प्रसाद तोमर छंद हर जन्म मरण विहीन द चार चार प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछेद तेज उदार अनभेद रूप दुरांत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान द चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक विदार कलकाल कर्म विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थाप्यो जय थाप अनखेद भेद अछेद मुखचार गावत भेद जय नेत निगम कहंत मुखचार वकत बेअंत अनभेद अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय कीन जगत पसार रचियो विचार विचार अनंत रूपा खंड अतुल प्रताप प्रचंड जय अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निपार कई ब्रह्म विषण विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिन नगेंद्र कई माच्छ काच्छ फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषण अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद अमुखचार कई रुद्र छुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोप का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहूं कतत ही सो पुराण कई अगन होत्र करंत कई उर्द ताप दुरंत कई उर्द भाव संन्यास कहूं जोग भेष उदास कहूं निवली कर्म करंत कहूं पौन हार दुरंत कहूं तीरा दान पार कहूं जग कर्म उदार कहूं अगन होत्र अनूप कहूं न्याय राज विभूत कहूं शास्त्र सिमृत रीत कहूं वेद स्यों विपरीत कई देश देश फिरंत कई एक ठौर संत कहूं कर जल में जाप कहूं सात तन प्रताप कहूं बाज बने करंत कहूं ताप तनह सहंत
कहूँ गृहस्थ धर्म अपार, कहूँ राजनीत उदार, कहूँ रोग रहत अभरम, कहूँ कर्म करत अकरम, कहूँ शेख ब्रह्म स्वरूप, कहूँ नीत राज अनूप, कहूँ रोग शोक विहीन, कहूँ एक भगत अधीन, कहूँ रंक राजकुमार, कई वेद व्यास अवतार, कई ब्रह्म वेद रटंत, कई शेख नाम उचरंत, बैरा कहूँ संन्यास, कहूँ फिरत रूप उदास, सब कर्म फोकट जान, सब धर्म नह फल मान, बिन एक नाम आधार, सब कर्म भ्रम विचार। तो प्रसाद लघु नराज छंद, जले हरि थले हरि, उरे हरि बने हरि, गिरे हरि गुफे हरि, छिते हरि नभे हरि, इहारि उहारि, जिमि हरि जमा हरि, अलेख हरि अभेख हरि, अधोख हरि अद्वैख हरि, अकाल हरि अपाल हरि, अछेद हरि अभेद हरि, अजंत्र हरि अमंत्र हरि, सो तेज हरि अतंत्र हरि, अजात हरि अपात हरि, अमित्र हरि अमात हरि, अरोग हरि, अशोक हरि, अभर्म हरि, अकर्म हरि, अजय हरि, अभय हरि, अभेद हरि, अछेद हरि, अखंड हरि, पंडंड हरि, दंड हरि, प्रचंड हरि, अतेव हरि, अभेव हरि, अजेव हरि, अछेव हरि, भजो हरि, थपो हरि, तपो हरि, जपो हरि, जलस्वी, थलस्वी, नदीस्वी, नदस्वी, वृक्षस्वी, पतस्वी, छितस्वी, ऊर्धस्वी, भजस्वंग, भजस्वंग, रटस्वंग, ठटस्वंग, जिमि तुहि, जमा तुहि, मकी तुहि, मका तुहि, अभू तुहि, अभय तुहि, अछू तुहि, अछय तुहि, जतस्तु ही, व्रतस्तु ही, गतस्तु ही।

फूक मल हरी गज गद हाबिब उधारी के दुआ मसान ब्यास करो ही करत है। घुगमड वासी लगे डोलत उदासी मृग तरवर सदी मोन सदे ही मरत है। बिंद के सदैता हीर की बटैया देत बंदरा सदू पाय नागे फिरत है। अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के भीन छीन कैसे के तरत है। भूत बने चारी छि चौना सब दूधा धारी पान के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के भछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया वृग भैया मानियत है। नव के उड़ैया दाय पंछी की बंडैया देर बगला बिडाल ब्रेक ध्यानी ठानी आते है। जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी पे बखानी ना ए, ऐसे ना प्रपंच मन भूल आनी आते है। भूम के बसहता है भूचरी के जैया कह नव के उड़ैया सो चिरैया के बखानी है। फल के भछैयाता है बांदरी के जैया कह आदेश फिर तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि का हथ जग आखे भछैया सो चकोर सम्मानी है। सूरज सिवैता है कौल की बढ़ाई दे चंद्रमा सिवे को कवई का पहचानी है। नारायण कच्छ में तेंदुआ कह सब कौल नाम कौल जय ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब धेन जारी रिखे के नाम के महंत लहियत है। माधव भवर और कन्हैया नाम कांस को बतैया जम दूध कहियत है। मूड रूट पीटत ना गुड़ता को भेद पावे पूजत ना ताहे जाके राखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल वैरी साल सदा प्रतपाल जम जालते रहत है। जोगी जटा धारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्या देह पैसहत है। निवली करम जल होम पावक पवन होम अधो मोएक पाए ठाडे न बहत है। मानो फनिन देव दानो न पावे भेद भेद अकतेब नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत घोर सामनी अनेक भाव करे वही करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरत तपत तेज इंद्र सोना राजा भाव भूम को भरत है। शिव से तपस्या ब्रह्मा से न बेचारी सनत कुमार सी तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराए फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय रामचंद्र किशन के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा और विष्णु के ते भेद और पुराण के ते सिमरत समूहन के होए होए बिताए है। बोंदी मदार के ते अंशनी कुमार के ते अंशा अवतार के ते कालबद्ध भय है। पीर और पिकाम्बर के ते गणेना परते ते भूमि ते होके फिर भूमि ही मिलाए है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र की छाया कई कोसला चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिर देश बड़े बड़े राजन के द्रव्य को दलत है। मान से मही पौ दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान भोज दंड को करत है। दारा से दिल्ली सर दुर्योधन से मानधारी भोग भोग भूमन भूम में मिलत है। सिर दे करे अनेक तोपची कपड़ भेद ओसी।

कहा भयो रोगी जो पेट आयो रहे और तमो का मानते ना मुंडी रायो आज इसका कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना भीन कैसे पावे जाके जिसका शीश पट कत जाके कान में खजूरा धसे मूंड छट कत मित्र पुत्रों के सोग सा आग को चरैया फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरों न भोग सा कहा भयो भेड़ जो घसा सी वृक्षण सा माटी को भछैया बोल पूछ लीजिए जोग सा कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना भीन कैसे भेटे पर लोग सा नाचो ही करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करो ही करत है एक पाए ठाटे सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाँव भूम श्रावक धरत है पहन अनेक जुग एक ठौर वास करे काग और चील दे देल बिचरत है ज्ञान के विहीन मैदान में न हुजलिन भावना यकीन दिन कैसे के तरत है जैसे के स्वांगी कहूँ जो गया बैरागी बने कब हूँ संन्यास भेद बन कर दिखावई कहूँ पवन हरि कहूँ बैठे लाए तारी कहूँ लोभ की कुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंड धारी होके लोगन भ्रमावई कामना अधीन परे नाचते नाचन सो ज्ञान के विहीन कैसे भ्रम लोग पावई पांच बार गीदर पुकारे पर शीत काल कुंचर गहन एकदा पुकार ही कहा भयो जो पे कलवत्र लियो कांसी भी चीर चीर चोटा कुठारन सो मार ही कहा भयो फांसी डार बूढ़े जा गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक धार मूढ़ ज्ञान के बिना विचार भावना भीन कैसे ज्ञान को विचार ही ताप के सहते जो पपाइये तापना तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए थे जो पपाइये ता जाव दे पूजना सदी तू ही उचरत है नभ के उड़े थे जो पे नारायण पाइया था नल का पंछी डोलपो करत है आग में जरते गत रांड की परत कर पताल के बासी क्यों भुजंग ना तरत है को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी

करता करीम सोई राजक रहीम होई दूसरो ना भेद कोई भूल ब्रह्मान बो एक ही से सब ही को गोर देव एक ही स्वरूप सब एक जो जान बो देहु राम सी सोई पूजा अनिवाज होई मान सब एक पयान एक को भ्रमाव है देवता देव जाच्छे गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के भेष को प्रभाव है एक नैन एक कान एक दे एक बान खाक बाद आतसो आव को रलाव है अल्लाह भेग सोई पुरानो कुरान हो एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे आगते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाएंगे जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे जैसे एक नत्य तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते ऊपर सब ताही में समाहेंगे केते काछ माच के तो उनको करत भच केते अच्छ वच होए सब पच ओट जाहेंगे केते न बीज अज पच को करेंगे भच केतक प्रत्यक्ष होए पचाए खाए जाहेंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही चबाहेंगे तेज युवा तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताही ते उपाय सब ताही में समाहेंगे कुकत फिरत केते रोवत मरत केते जल में डुबत केते आग में जरत है केते गंगवासी केते मदीना मक्का निवासी केते उदासी के भरमाई फिरत है करवा सहत केते भूम में गड़त केते सुहा पे चढ़त केते दुख का भरत है ज्ञान में उड़त केते जल में रहत केते ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है शोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घस हारे चंदन लगाए हरे चोआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गा हारे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हारे भीतन लगाए हारे छापसी गाय हरे गंधर पंजाए हरे किन्नर सब पज हारे पंडित तपंत हारे तापसी ता प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद ना रागंग ना रंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना ग्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भरमंग ना जन्मंग ना जातंग ना पितरंग ना सतरंग ना मित्रंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सतरंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे सदा सिद्ध दाबद्ध दाबृत रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहा बासता को फिर कौन भेखंग कहा नाम ताको कहा कह कहा वह कहा कह बखानो कह मैं न आवे ना रोगंग ना सोगंग ना मोहंग ना मातंग ना कर्मंग ना भ्रमंग ना जन्मंग ना जातंग अद्वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अछेदंग अछे आद अद्वै अविनाशी ना जातंग ना पातंग ना रूपंग ना रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाये उसारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभय आद अद्वै अविनाशी परे अंग परापरम पूरन प्रकाशी ना आधंग ना व्याधंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छा विभूते ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे ना नेहंग ना गेहंग सनेहंग सनादे उदंडे मंडे प्रचंडे प्रमाते ना जाते ना पाते ना सत्रे ना मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे ना रायंग ना रंकंग ना रूपंग ना रेखंग ना लोभंग ना चोभंग ना भूतंग अभेखंग ना सतरंग ना मित्रंग ना नेहंग ना गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग ना कामंग ना क्रोधंग ना लोभंग ना मोहंग अजोनी अछे आदद्वै अजोहंग ना जन्मंग ना मरणंग ना वर्णंग ना व्याधंग ना रोगंग ना सोगंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग ना तातंग ना मातंग ना जातंग ना कायंग ना नेहंग ना गेहंग ना भरमंग ना भायंग ना रूपंग ना भूपंग ना कायंग ना कर्मंग ना त्रासंग ना प्रासंग ना भेदंग ना भरमंग सदैवंग सदा सिद्ध वृतंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निरुक्तं प्रवाद अनुक्तं प्रतापे अयुक्तं अक्षयाद अविक्ते अथापे विभुक्तं अक्षयाद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे ना नेहं ना गेहं ना शोकं ना साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अताकं
ना जातंग ना पातंग ना मित्रंग ना मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे ना धर्मंग ना भरमंग ना सर्वंग ना साके ना बरमंग ना चरमंग ना कर्मंग ना बाके ना सतरंग ना मित्रंग ना पुत्रंग स्वरूपे नमो आद रूपे नमो आद रूपे कहूं गंज के मंज के भरम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म थामे कहूं राज के बताज के बाज तामे कहूं अक्षर के पछर के सिरसा दे कहूं सत्य के बद्ध के वृद लाधे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के भरम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चेतर रूपंग कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपंग कहूं ने गृहंग कहूं दे दोखंग कहूं खदी रोग के शोक शोकंग कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जज गंधर्व किन्नर कहानी कहूं राजसी साधकी तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग युक्तं कहूं भूम की भुगत में भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जज विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं श्रेष्ठ के पृष्ठ के रेष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम वाणी कहूं कोक की काव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं भद्र रूपं कहूं मद्र वाणी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ पुराण के गीत गावे कहूं शुद्ध सेकं कहूं ब्रह्म धर्म कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रह देहं कहूं ने देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागंग कहूं रोग हरता कहूं भोग त्यागक कहूं राज साजं कहूं राज रीतं कहूं पुराण पुराण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं आरवी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाग्य कहूं देववाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं यंत्र रीतं कहूं शस्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूं बिन विद्या कहूं गान गीतं कहूं मिलज भाग्य कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नागवाणी कहूं गारुड़ गुड़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतंग प्रवाहो कहूं छल छाला धरे छत्र धारी कहूं राज साजंग

ना त्रस्तंग ना ग्रस्तंग समस्तंग स्वरूपे नमस्तंग नमस्तंग तू अस्तंग अभूते। तो प्रसाद पादड़ी छंद अभ्यक्त तेजन भव प्रकाश अच्छा स्वरूप अद्वयनाश अंतोट तेजन खुड भंडार दाता दुरंग सर्वंग प्रकार अनुभूत तेजन शेज गाज करता सदी हरदासनाथ आसन अडोल अनुभूत कर्म दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जा जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मान जय कर्म भरम नहीं धर्म ध्यान जय ने गे ने व्योधवान जय जात पार नहीं शत्रु मित्र जय ने गे नहीं चयन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेग जय जन्म जात नहीं भरम भेग जय कर्म भरम नहीं जात पार नहीं ने गे ने पितृमान जय नाम साम नहीं बरग ब्याज जय रोग शोक नहीं सत्र सान जय त्रास वास नहीं देना जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आद नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय भंग जय नेत नेत उचरंत बेद जय अलग रूप कथत कते जय अलग रूप आसन डोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन आनंद कई कलव जोग साधन दुरंत तन शीत घाम बरखा सहंत कई कलप एक आसन बितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तदप पावत न पार कई उर्द बादेशन ब्रह्मंत कई उर्द मद पावक झुलंत कई सिमरी शास्त्र उच्चरंत वेद कई कोम का कथत कते कई अगन होत्र कई पौन हार कई करत मो कोट मृत को आहार कई करत साग पे पत्र भच्छ नहीं तदप दे होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कई वेद रीजग आदि करम को अगन होत्र को तीर धर्म कई देश देश भाग खारटन कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नायकता पायत न पार कई तीरथ तीरथ भरम सो भरम कई अगन होत्र कई देव करम कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदप तास पायत न पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धर्म कई सिमर शास्त्र रुचर सो करम निवली आद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मक्को बखान कहूँ करत ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ करत जज गंधर्व गान कहूँ धूप देव कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ कर्म कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ करत शास्त्र सिमरित उच्चार कई भजत एक पग निराधार कई ने दे कई गे वाद कई भ्रमत दे देशन उदार कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तत तस पायत न अंत कई करत कोट विद्या विचार नहीं तद दृष्ट देखे मुरार बिन भकत सगत नहीं परत पान भो करत होम अर्जक दान बिन एक नाम एक चेतलीन फोकटो सर्व धर्मा विहीन। तो प्रसाद तोटक छंद जय जंपो जुगण जु जुग भय कंपो मेर पयाल भुवंग तब ताप सर्व जलेरु थलंग धन इचरत को इंद्र कुमेर बलंग अनखे स्वरूप अभेद अभियंग अन खंड अभूत अछेद अछियंग अन काल अपाल दयाल सुअंग जय ठटिया मेर काज भुवंग अन खंड मंड प्रचंड रंग जय रचियंग देव देव बरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व कीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात न पात न मात पितंग जय रचंग छत्री छत्र छितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाख न दो गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नौ खंड सचियो रस्तावस तेज अतेज कियो अनुभव पदा प्रचंड लियो से सिंदर बिंद न गिंद न गंग श्री जाच गंधर्व फणिंद भुजंग रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेत उद भुजंग किय देव अदेव सराज पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न जो जुजंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भोंग जय जंप किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जाय किए गण किन्नर जज भुजंग दिए गज बाज रसाधिक पांच गणंग भूत अभूत भवान भुवंग जय अंड सेत जय रजन रज भूम काल पताल जलंग रज पावक पान प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भो मेरा का निवासितंग रज रोज का द चंद्र वृतंग दुध चंद दिनिसा दीप दई दे पाव पान प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए
जय लोक छतर जा चार रचे नर गंधरा देव अधेव सचे अन धूता भूता छूत मतंग अन गाद अभ्याद अनाद गतंग अन खेद अभेद छेद नरंग जय चार चतर दा चक्र फिरंग जय राग ना रंग ना रेग रुखंग जय सोग ना भोग ना जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आज सिरंग जय बंदा देव अदेव नरंग गण किन्नर जज भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज बृतंग जय पार न पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप दंड प्रभा जय जमपद वेद पुराण सभा जय वेद कतेब आनंद कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपै सो सिंध अदो मुक्त आप तपै कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नय कृपा निध पान पर जय फोकर धर्म सब तज है चित कृपा निध को जप है त्यो या भव सागर को तर भव भूल ना दे पुनर्धर है एक नाम बिना नय कोड वृति वेद उचार सा सुति जो वा रस के चस के रस है त्यो भूल ना काल फंदा फस है सौ प्रसाद नाराज छंद अगंज आद देव है भंज भंज जानिए भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त वृद्ध दा सजीव सर्व सात है अनाथ नाथ नाथ है भंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है छेद तेज मानिय सदैव सिद्ध सिद्ध दा प्रताप पत्र जानिय ना राग रंग रूप है ना रोग राग रेख है दोग दाग दक है भूता भरम अभेक है ना तात्मा जात है ना पाच्यन वरण है देख असेग अभेक सदैव विश्व भरण है विश्वंबर विश्वनाथ है अभिषेक विश्व भरण है जमी जमान के विखय सदैव करम भरम है अद्वैक है अभेक है लेख ना जानिय सदैव सर्व ठौर में अभिषेक आन मानिय न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अकुरान नेत नेत कह बतावई न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आदेव कसु कस पाई है जिमी जवान के विकह समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान समान रूप जानिए मकीनो मकान प्रमाण तेज मानिए न देह न गेह न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दोग है न दाग है न द्वैक है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंक है न मान है न मौत है न साग है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न शाह है न शाह को कुमार है न ने है न गे है न देव को बनाव है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेक है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न तात है न मात है अखल खंड रूप है अछेद है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न सोग है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न सात है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र की विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैक है न भेक है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदैव दयाल रूप है अगंज है भंज है भरम है भूत है छेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत अभेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैक है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चयन वर्ण है व्यंत है अनंत जानिए अभूम अभिज है सदा छे जवानिए न आद है न ब्याद है न गाद रूप लेखी है अदोक है अदाग है अच्छे प्रतापेखी है न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज सी विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार है न आद है न गाद है न ब्याद को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेख रार है हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है गजाधपी नराधपी करण सेव है सदा सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपस सदा अगस्त आत जे बड़े तपस्पति विशेखी है
ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਕਰੰਤ ਪਾਠ ਪੇਖੀਐ ਅਗਾਧਾ ਦੇਵ ਕੀ ਅਨਾਦ ਬਾਤ ਮਾਨੀਐ ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਤਰ ਸਤਰੁ ਸਨੇਹ ਜਾਣੀਐ ਸਦਿਉ ਸਰਵ ਲੋਕੈ ਕਿਰਪਾਲ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਰਹੈ ਤੁਰੰਤ ਦਰੋਹ ਦੇਹ ਕੋ ਅਨੰਤ ਭਾਂਤ ਸੋਧ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੂਆਮਲ ਛੰਦ ਰੂਪ ਰਾਗਨਾ ਰੇਖ ਰੰਗਨਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਹੀਨ ਆਦਨਾਦ ਅਕਾਦ ਪੁਰਖਸੋ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਤੰਤਰ ਜਾਗੋ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਹੱਥ ਕੀੜ ਭਿਖੈ ਬਸੇ ਸਭ ਠੌਰ ਮੈਂ ਨਿਰਧਾਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਤਾ ਜਾਗੋ ਮੰਤਰ ਮਾਤਨਾ ਮਿੱਤਰ ਸਰਵ ਠੌਰ ਬਿਕੈ ਰਮਿਓ ਜੈ ਚੱਕਰ ਚੈਨ ਨਾ ਛਿੱਤਰ ਆ ਦੇਵ ਦਾਰ ਮੁਰਦ ਅਨਾਦ ਨਾਦ ਅਨੰਤ ਆਦ ਅਨੰਤ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਭਿਖਾ ਦੇਵ ਦੁਰੰਤ ਦੇਵ ਭੇਵ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜੈ ਮਰਮ ਬੇਦ ਕਤੇਵ ਸਨਕ ਅਵਸਨ ਕੇਸ਼ ਨੰਦਨ ਪਾਵਈ ਨਾ ਹਸੇਵ ਜਜ ਕਿਨਰ ਮੱਛ ਮਾਨਸ ਮੁਰਗ ਉਰਗ ਅਪਾਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਪੁਕਾਰਹੀ ਸੋ ਸਿਖਰ ਅਮੁਕਚਾਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਪੁਕਾਰਹੀ ਸੀ ਸਕਰ ਅਮੁਕਚਾਰ ਸਰਬ ਸਪਤ ਪਤਾਰ ਕੇ ਤਰ ਜਾਪ ਹੀ ਜੈ ਜਾਪ ਆ ਦੇਵ ਗਾ ਤੇਜ ਨਾਦ ਮੁਰਦ ਤਾਪ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਵੈਕਰ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਕੀਨ ਸਰਵ ਠੌਰ ਰਹੋ ਵਿਰਾਨ ਧੀਰਾਜ ਰਾਜ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜਛ ਕੰਦਰ ਦੇਵ ਦਾਨੋ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਛਤਰੀ ਮਾਹੇ ਬੈਸਰੰਗ ਕੇ ਬਿਖੇ ਬਿਰਾਜੇ ਸੂਦਰ ਵੀਵ ਨਾਹੇ ਗੂੜ ਗੌਣ ਨਾ ਭੀਲ ਭੀਕਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇਗ ਸਰੂਪ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ਨਾ ਮਰਦ ਉਰਦ ਨਾ ਭੂਮ ਕਾਸ ਅਨੂਪ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਮ ਨਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿਹੀਨ ਤੀਰ ਜਾਤਰ ਨਾ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਗੋਰ ਕੇ ਨਾ ਅਧੀਨ ਸਰਬ ਸਪਤ ਪਤਾਰ ਕੇ ਤਰ ਜਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਜੋਤ ਸੇਸ ਨਾਮ ਸਹਸ ਫਨ ਨੇਤ ਪੂਰਨ ਹੋਤ ਸੋ ਸੋਧ ਹਟੈ ਸਵੈ ਸੁਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾਨੋ ਸਰਬ ਗਾਏ ਗਾਏ ਹਟੇ ਗੰਧਰਵ ਗਵਾਏ ਕਿੰਨਰ ਗਰਭ ਪੜਤ ਪੜਤ ਥਕੇ ਮਹਾਕਵੀ ਗੜਤ ਗਾੜ ਅਨੰਤ ਹਾਰ ਹਾਰ ਕਹਿਓ ਸਭੂ ਮਿਲ ਨਾਮ ਨਾਮ ਦੁਰੰਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ ਲਖਿਓ ਨਾ ਸੇਵ ਕਤੇਵ ਦੇਵ ਦਾਨੋ ਮੂੜ ਮਾਨੋ ਜਛ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇਬ ਭੂਤ ਭਬ ਭਵਾਨ ਭੂਪਤ ਆਦ ਨਾਦ ਨਾਥ ਅਗਨ ਪਾਏ ਜਲੇ ਥਲੇ ਮੈਂ ਸਰਵ ਠੌਰ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਗੇ ਨਾ ਨੇ ਸਨਿਆ ਬੇ ਨਾਦ ਅਜੀਤ ਸਰਵ ਗੰਜਨ ਸਰਵ ਪੰਜਨ ਸਰਵ ਤੇ ਅਨਭੀਤ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਸਰਵ ਹਰਤਾ ਸਰਵ ਦਿਆਲਤ ਫੇਕ ਚੱਕਰ ਚੇਨਾ ਬਰਨ ਜਾ ਕੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਫੇਖ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਜਾ ਕੋ ਰਾਗ ਰੂਪ ਨਾ ਰੰਗ ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਖਯ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੰਗ ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਸਰਬ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਦੀਨ ਬੰਦਿਆਲ ਸਵਾਮੀ ਆਦੇਵ ਅਪਾਲ ਦੀਨ ਬੰਦ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸਰਬ ਕੋ ਕਰਤਾਰ ਬਰਨ ਚੇਨ ਚੱਕਰ ਜਾਕੋ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਅਕਾਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਗੋਤ੍ਰ ਗਾਤਾ ਰੂਪ ਰੇਖ ਨਾ ਬਰਨ ਸਰਬ ਦਾਤਾ ਸਰਬ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬ ਹੋ ਕੋ ਭਰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਗੰਜਨ ਸਤਰ ਭੰਜਨ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਥ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਦਿਆਗਤ ਮੈਂ ਜੈ ਗਾਥ ਭੂਤ ਭਵ ਭਵਿਕ ਭਵਾਨ ਪ੍ਰਮਾਨ ਦੇਵ ਅਗੰਜ ਆਦ ਅੰਦਨਾ ਸ੍ਰੀਪਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਅਭੰਜ ਧਰਮ ਕੇ ਅਨ ਕਰਮ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀਨ ਤੌਨ ਪਸਾਰ ਦੇਵ ਦੇਵ ਗੰਧਰਵ ਕਿੰਨਰ ਮੱਛ ਕੱਛ ਅਪਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਜਲੇ ਥਲੇ ਮੈਂ ਮਾਨੀਏ ਜੈ ਨਾਮ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਤਾ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹਰਤਾ ਕਾਮ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਦਿਆਲ ਲਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿੱਤਰ ਪਾਲਕ ਸਤਰ ਖਾਲਕ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮੁਕੰਦ ਅਘਾਟ ਅੰਡਣ ਦੁਸ਼ਟ ਖੰਡਣ ਕਾਲ ਹੁਕੇ ਕਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਨ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨੰਗ ਸਰਬ ਕੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਸਰਬ ਕੇ ਅਨਕਾਮ ਸਰਬ ਖੰਡਨ ਸਰਬ ਦੰਦਨ ਸਰਬ ਕੇ ਨਿਜਭਾਮ ਸਰਬ ਭੁਕਤਾ ਸਰਬ ਯੁਕਤਾ ਸਰਬ ਕਰਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਰਬ ਖੰਡਨ ਸਰਬ ਦੰਦਨ ਸਰਬ ਕਰਮ ਅਧੀਨ ਸਰਬ ਸਿਮਰਿਤਨ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਸਰਬ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਰਤਾ ਆਦਿ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੰਡਨ ਪੁਸ਼ਟ ਖੰਡਨ ਆਦੇਵ ਅਖੰਡ ਭੂਮਕਾ ਜਲੇ ਥਲੇ ਮਹ ਜਪਤ ਜਾਪ ਅਮੰਡ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਤੇ ਜਾਣੀਏ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਆਦੇਵ ਅਪਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪਦ

चार विचार भेद पे होना पावई सिरोद्रव मुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनत सनत कुमार गाय गाय थके सब चक्र भे मुख चार हाथ अंतना बद जाको भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कलयुग छत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सबे नहीं पाई है तय पार नारद आदि वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट तुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाज पच्छर पार सो सो थके महासुर पायो नह पार तो प्रसाद दोहरा एक समय श्री आत्मा उचरियो मसी बैन सब प्रताप जगदीश को कहो सकल भी तैन दोहरा को आत्मा स्वरूप का श्रेष्ठ को विचार कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा कह जी तब का मरण है कवन स्वर्ग नर को सुगड़ा को मूर्ता कहा तरक अव तरक दोहरा को निंदा जत है कवन कवन पाप का धर्म कवन जो को भोग है कवन अवकर्म अवकर्म दोहरा कौसो सब का सो कह दम को कहा कहंत को सूरा दाता कवन तंत को मंत दोहरा कहा रंग राजा कवन हरग शोक है कवन को रोगी रागी कवन कहो तंत मोह तवन दोहरा कवन श्रेष्ठ को पुष्ट है कहा श्रेष्ठ को विचार कवन श्रेष्ठ को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा कहा कर्म को कर्म है कहा भ्रम को नाश कहा चितन की चेष्टा कहा छेद का दोहरा कहा नेम संयम कहा ज्ञान ज्ञान को रोगी सोगी कवन कहा धर्म

तो प्रसाद दीरक तिरभंगी छंद दुर्जंधन दंडन असुर विहंडन दुष्ट निकंदन आदवृते चतरासुर मारण पते धारण नरक निवारण गूढ़ गते अक्षय खंडे तेज तंडे खंड डंडे लखमते जय जय होसी मै कासुर मर्दन रंभ कपर्दन छत्र छिते आश्री विहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट डंडन रूपते चंडासुर चंडन मुंड विहंडन धूम्र विदंशन मैकमते दानो प्रहारण नरक निवारण अधम उधारण उर्ध जय जय होसी मै कासुर मर्दन राम कपर्दन आलवृते डावरु डवंके बवर भवंके भुजा भरंके तेज भरंग लंगुड़िया फांदे अंध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टाय चमके भूकंड दमके अस्सी जमके फुंग फरंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन राम कपर्दन दय जिणंग चंडासुर चंडन बंड बेमंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन धुजा भरंकन फणी फुंकारण जो जिते सरदार विपरखन दोष प्रकरखन पुष्प प्रहरखन दुष्ट मते जय जय होसी मै कासुर वरदन भूमकास तल उर्द अधे दामनी प्रहासन सुचभ निवासन श्रेष्ठ प्रकाशन गुण गते रक्तासुराचन जुदय जोत प्रमाचन निर्दय नराचन धर्म वृते सुरोणता चिंती अनल बेंती जोग जयंती खड़क धरे जय जय होसी मै कासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अगोग निवारण दोष प्रजारण श्रेष्ठ उपारण सोत मते फणियर फुंकारण बाघ बकारण शास्त्र प्रहारण साध मते सैती सनाहन अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज अतुलंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन भूमकाल पताल जलंग चाचर चमकारन चिच्छुर हरन धोंद्र कारण द्रव मथे दाढ़वी प्रदंते जोग जयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज पतेजन अष्टभुजे जय जय हुसी मै कासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म ध्वजे घुंगरु घमंकण शस्त्र झमंकण भणियर फुंकारण धर्म ध्वजे अष्टाढ़ प्रहासन श्रेष्ठ निवासन दोष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाहे शोध सनाहे अगमथाय एक वृते जय जय हुसी मै कासुर मर्दन आद कुमारक आद वृते सुर नर मन बंधन दोष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन वृत मथे कावरु कुमारे अधम उदारे नरक निवारे आद कथे किंगणी सोहन सुंदर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय होसी सब ठौर निवासन बाय पताल काश अनले संकटी निवारण अधम उदारण तेज प्रकरण तुंद बे दुख दोग जयंती ज्वाल जयंती आद नाद गाद कच्छे संतता समर्पण तर्क वितरकण तपत प्रतापन जपत जीवे जय जय होसी शास्त्र प्रकरण आद अनिल अगाद अभे चंचला चखेंगी अलग भुजंगी तुम तरंगण तेज सरे कर कसाक उठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमन के हल्लंके आदतंके क्रूर कथे जय जय होसी रक्तासुर खंडन सोम चक्र निसोम मथे बारज विलोचन ब्रितन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुसन्ना से सुब्रित सुवासे दुष्ट ग्रसे चंचला प्रंगी बेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हुसी मै कासुर मर्दन आद अनाद अगाद उर्धंग घंट का विराज्य रुण जुण बाज्य भ्रम भय भाज्य सुनत सुरंग कोकल सुन लाज्य कल्प भाज्य सुख पराजय मत उरंग दुर्जन दल दज्जय मंथन रिज्जय समय न पज्जय रोह रणंग जय जय होसी मै कासुर मर्दन चंड चकर्दन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विजुंसन प्रलय प्रजुंसन जाग विजुंसन शोध मते जालपा जयंती सत्र मथंती दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हुसी मै कासुर मर्दन आज उगाद अगाध गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते ब्रिड लाज विहंडन चक्षुर दंडन तेज चंडन आद वृते सुर नर प्रत पारण पदे धारण दुष्ट निवारण दो घरे जय जय हुसी मै कासुर मर्दन बेसु विदंशन श्रेष्ठ करे दामनी प्रकाशे उन्तरना से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकरखण सर्वर वरखण दोष प्रधरखण बितल तले अष्टाद बाण बोल निवाण सद पनाहर गौ गूढ़ गते जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनाद अगाद वृते दुख दो प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सुनाए दोष प्रदाहे अर्दल गाहे दो घरे गंजन गुमाने अतुल प्रमाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मै कासुर मर्दन साध प्रदन दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ गहिली जो जतीली तुंद मते अष्टायुध चमकण शस्त्र झमकण दामिन दमकण आदवृते ढुग ढुगी दमंके बाघ बबंके भुजा फरंके शोध गते जय जय होसी मै कासुर मर्दन आज उगाद अनाद मते चचरासुर मारण नरक निवारण पते धारण एक भटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कट्टे चंद्रानन चार नरक निवारे पते धारे मुंड मथे जय जय होसी मै कासुर मर्दन धूम्र विदुंसंग आद कथे रक्तासुर मर्दन चंड चकर्दन दान
मन अर्दन बिडाल बधे सोर सरदार भी बरखन दुर्जन धरकन अतुल अमरखन धर्म धुजे धुम राज विजुनसन श्रोण चुन सन सोम निपार निसोम मथे जय जय होसी मै कासुर मर्दन आद अनिल अगात कथे तो प्रसाद पादड़ी छंद तुम कहो देव सर्वंग विचार जिमखियो आप करते पसार जब अभूतन भय अनंत कहो जता मत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल अद भय अभूतन भय दयाल दाता दुरंत दुख दोग रह जय नेत ने सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बनाओ सब वार पार जागो प्रभाओ सब जीव जंत जानंत जाय मन मूड क्यों ना सेवनता है कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सा सूरा सिवंत कई पलट सूरज पाई पलट सूरज सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वय कह लखाए अनिशेज तेज अन भय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय अनाथ सब रोग शोक ते रहत रूप अन भय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दो हर दाता दयाल अंजन विहीन अन भंजना जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पार नहीं भेद भ्रम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अचल अपार जानी ना जाय जय रूप रे कह बास तास कह कौन भेग कह नाम तास है कवन जा जय सत्र मित्र ने पुत्र भ्रात करुणा निधान

पच पसुनक नाग नराधिप सर्व समय सबको व्रत पार है। फोकत है जल मै थल मै पल मै कल के नि करम विचार है। दीन दयाल दयानि दोखन देखत है पर देत न हार है। दाहत है दुखन को दल दुजन के पल मै दल डार है। खंड खंड प्रचंड पहारन पूरन प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पद्मावत भेद कते भेद उचार है। रोजी ही राज लोक राज रोग रोहान की रोजी न टार है। कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविक भान बनाए। देव देव खपे अहम एव ना भेव लखे भ्रम सिंह भरमाए। वेद पुराण कतेब पुराण हसेब थके कर हाथ न आए। पूरन प्रेम प्रभाव बिना पात स्यों केन श्री पद्मा पद पाए। आद अनंत अगाध अद्वेक सो भूत भविक भवान वह है। अंत विहीना नातम आदाग क्षेत्र अच्छय है। लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह है। दीन दयाल दया कर श्री सुंदर श्री पद्मावत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। दे विहीन सने सबोतन नेह ब्रग अगह छय है। जान को दे त जान को दे जमीन को दे जमान को द है। काहे को डोलत है तुमरी शुद्ध सुंदर श्री पद्मापत लय है। रोगंते अरसोगंते जल जोगंते भव भांत बचावे। शत्रु अनेक चलाओ दिखाओ तऊ तनेक ना लागन पावे। राखते अपनो करते कर पाप समूना भेटन पावे। और की बात कहां कह तो सो सो पेट ही के पाट बीच बचावे। जज भुजंग सो दानव दे अभे तुम्हें सब ही कर ध्यावे। भूम काल पताल रसा चल जज भुजंग सब ऐसे न्यावे। पाए सके नि पार प्रभाव को नेत ही नेत वेद बतावे। खोज सके सब ही खुजिया सुर हार परे हरात नावे। नारद से चतुरानंद से रुमनारी से सब हूँ मिल गायो। वेद कते बिना भेद लखे हो सब हार परे हरात न आयो। पाए सके नहीं पार उमापत सत सनात सनंतन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जय को तो समय जग छायो। वेद पुराण कते पुराण भेद निरपान समय पचहारे। भेद ना पाए सके अन भेद को खेदत है अनुच्छेद पुकारे। राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना शोक ना संग तिहारे। आद अनाद अगाध अभेग अद्वेग जपियो तिन ही कुल तारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए वो दान महाव्रत धारे। देश प्रियो कर भेष तपोधन के धरे ना मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुक्कारे। दीन दयाल काल भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। तो प्रसाद कबित अत्र के चलैया छे छत्र के धरैया छत्र धारी के छलैया माँ सतरन के साल हैं। दान के दिवैया माँ मान के बढ़ैया अवसान के दिवैया कटैया जम जाल हैं। जोध के जितैया भरत के मिटैया माँ बुद्ध के दिवैया माँ मानु के मान हैं। ज्ञानु के गाता माँ बुद्धता के दाता देव कालु के काल माँ कालु के काल हैं। पूर्वी ना पार पावे हिंगला हिमालय धावे गोर गर दे जी गुण गावे तेरे नाम हैं। जोगी जोग साधे पौन साधना किते बाधे अरब के अरब याराते तेरे नाम हैं। फरा के फरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम हैं। मरटा मंगले तेरी मानसो तपस्या करे दड़वे तिलंगी पहचाने धर्म धाम हैं। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है। रो के रोहेले मांग देश के मंगले वीर बंग सी मुंदेले पाप पुंज को मिलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीश नियावे तिब्बती ध्याय दो के दलत है। जिने तो है ध्यायो तीने पूरन प्रताप पायो। सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरे दान वान को महत गंग दान को अभेद कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे अधीन साध अधीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है। पार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचत ताहे चींटी की चिंगार पहले ही सुनियत है। केते इंद्र द्वार केते ब्रह्मा मुखचार केते कृष्णा अवतार केते राम कहियत है। केते ससरासी केते सूरज प्रकाशी केते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। केते महादीन केते व्यास ब्रह्मीर केते कुमेर कलीन जच केते जच कहियत है। करते हैं विचार पैना पूरन को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार ना पारावार पाइये ना पार पे अपार कह बखानी है। अद्वै अविनाशी परन पूरन प्रकाशी माँ रूपों के राशि अनासी कह के मानी है। जंत्र हुना जा जा की बाप होना मायता की पूरन प्रभा की सो छटा के अनुमानी है। तेज हूँ को तंत्र के राशि को जंत्र के मोहनी को मंत्र निजंत्र कह के जानी है। तेज हूँ को तरह के राशि को सारे के शुद्धता घरे के शुद्धता की सार है। कामना की खाने के साधना की सहने व्रक्तता की बाने के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूपों को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनीमन को गारक है के साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रोध को अभूत है के

काम को गनींदा है, खुबी को दींदा है, गनीमन गरींदा है, तेज को प्रकाशी है, काल हु के काले के सतरन के साले के मित्रन को पोकत के वृद्धता की बासी है, जोग को जंत्र के तेज हु को तंत्र के मोहनी को मंत्र के पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास के बुद्ध को प्रकाश के शुद्धता को वास के बोधों को घर है, देवन को देव है निरंजन अभेव है, देवन को देह है के शुद्धा को सर है, ज्ञान को बचाए मान को दिव्य है, जम जाल को कटे कामना कर है, तेज को प्रचंड है, अखंड को खंड है, महिपन को मंड है के स्त्री है ना नर है, विश्व को भरने के आपदा को हरने के सुख को करने के तेज को प्रकाश है, पाइये न पार पारावार को पार जाओ की जा विचार सो विचार को निवास है, हिंगला हिमालय का वे हब सी हलबी धावे पूर्वी न पार पावे आशा ते अनास है, देवन के देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभिवनाथ अद्वय अविनाशी है, अंजन विहीन निरंजन प्रवीण के सेवक धीन कटैया जम जाल के, देवन के देव मा देव हूं के देवनाथ भूम के भुजैया है मुहे मा बाल के, राजन के राजा मा साजू के साजा मा जोग हूं के जोग धरैया धर्मशाल के, कामना के कर है के शुद्ध बुद्धता को हरे के शुद्धता की साथी है, काल है कुचाल के, छीर कैसी छीरा व छात कैसी छतरा ने, छपा कैसी छप कालिंद के कूल के, हंस निसी सिहारू हीरा सी हुसैनाबाद, गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के, परासी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद नीके रही झूल के, चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरती हरी रही मालती सी फूल के, फटक सी कैलाश कमावगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद नीके सोई यत है, हिम्मा सी हिमालय हर हाप सी हल्ला बानेर, हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है, चंदन सी चंपावती चंद्रमासी चंद्रागिरी चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है, गंगा सम गंगदार वकांसी बुलंदाबाद की रति हारी की विजयारी सोहियत है, फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है, भखरी गंधारी गोर गखरी कर देदाचारी पान के आहारी तेरो नाम ध्यायत है, पूरा पलाव काम रूप कमाऊ सरब ठा

0: मन विच सोचदा कोई गल नहीं है, महाराज ने आज्ञा दिती ना, महाराज ने जो वचन किया असल गल जेड़ा है प्यारे हुक्म मनना। माता जी विचार कर दे महाराज जी दे हुक्म दे विच मैं निमगन रहना है,
1: पिंजर कर दे
0: ते अपने शरीर नू जेड़ा ना

ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान

सच्चे त्रिखंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे त्रिलोक सच्चा कार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा प्रमाण सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुद अकल करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब दूर सच्ची तेरी शिव सच्ची साला सच्चे तेरे कुदरत सच्चे पातशाह नानक सत्य सच जो मर्ज मैं सुखा चिने कच महला।